0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला मध्याह्नको 12 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 1 बज्यो।

राम्रै तिमी छानी हाम्रो ओठ ठोक्ने बानी मुसु मुसु हाँसिदेऊ न मेरी दिलकी रानी ए लट्ठै पार्यो मट्ठै पार्यो

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 2 बज्यो।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
2: दशमलव छ मेगाहर्ज
1: रेडियो बिहानी 97.6 MHz।

सर। एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी। एलजी लाइफ्स गुड।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 7 बज्यो।

0: नया नेपालको नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
2: लस्तो है मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम बोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम चमटार की ट्रनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी दिम फिटिंग सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 0102-524-70 असेम 98511-87-882 फोन सिंह जिम सेगो है रोमा।